scuola. Roberto è il padre di quindi ab ingegnere sono di solito in fondo, quindi sono di più, sono di Kalakarne Sablavadak Ravindra Hathi Prasthuti hai Manisha Jayanti Sunye is Shankla ka Gyarva Dha Mulud, is karikram ka puna pasaran aap sunenge Aaj Shyam Shar Bajka Saitari Sunyakta Saat Kaji Sunye Dhule Vishra Ji Saat Bajka Tis Sunyakta Ham Harani Piyar Ki Aad Bajka 15 Minuta Sunye Kitaveli Iska puna pasaran aap sunenge Aaj Dupahar 2 Baji आप बजकर 30 मिनट पर चित्रलोक कार्यक्रम 9:30 मिनट पर आज के संकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक रूप कुमार राठौर पर प्रस्तुति है रमेश गोखले की इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 मिनट पर प्रस्तुति सुनिए पिटारा में आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी जी ममता सिंह की बातचीत प्रस्तुति है जुबैर खान की 11 बजे सुनिए एरन करण कार्यक्रम 12:05 पर यादों की मंजिल 1 बजे से तय करेंगे श्रीला सफर दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नवरी 3 बजे सुनिए सखी सहेली 4 बजे हेलो फरमाइश 5 बजे छाया जी 5:30 मिनट तक सुनिए तराने नए तिराने

छुट्टी राघवेंद्र निजी की। माफ कीजिएगा, 9 बजे आप सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, फिर 10 बजे आप सुनेंगे छाया दीप कार्यक्रम। 10:30 पर ढलती जाएगा। ये था आज प्रसारित होने वाले

प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकेयी तो मात्र माध्यम बन गई। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए।

जिसके श्रीराम के युद्ध को ध्यान में रखकर भी जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक है, जो साहस करना ही कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशा की कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और योद्धों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति प्रेम परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्र दिक्पाल माया जी सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर भी

बताओ रविंद्र जी, बहुत से संगीतकारों की रचनाओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने रिदम पैटर्न के बारे में ताल जो बन रहा है उसमें अपना कुछ दे करके जोड़ करके एक नया पैटर्न बनाया है, नया रिदम पैटर्न देखने को मिलता है, वो उस गीत की जरूरत होती है। जैसे आदि बर्मन साहब का एक एल्बम

0: प्रथा में जो काम बज रहा था वो स्वयं उस दिन के लिए आर्य साहब ने कंपोज किया था या उसे बनाया था। ऐसे ही प्रयोग भूमिका फिल्म संगीत के बारे में भी देखने को मिलती
1: है, बिल्कुल देखने को मिलती है। और देखिए कि फिल्मी गीतों का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य उसी वजह से आया है और वो उस गाने को चिरंजीवी बनाता है। तो इसमें जब हम लोग ये रिदम पैटर्न की बात करते हैं तब मुझे ये कहना बहुत जरूरी लगता है, जैसे संगीतकार होते हैं, अरेंजर होते हैं, उसी तरह से फिल्मों में रिदम कंपोजर भी रहे हैं। अन्ना जोशी, मारुति कीर, भवानी शंकर, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका योगदान है कि जिस वजह से हमको ये इतने अच्छे अच्छे पैटर्न सुनने को मिले हैं। तो ये जो होता है गाना जब बनता है तब गाने के साथ में उसका रिदम कैसा होना चाहिए, उसका रिदम पैटर्न क्या होना चाहिए, ये तय करने वाले ये रिदम के अरेंजर होते हैं। और वो किस वाद्य पे ये पैटर्न अच्छा लगेगा, कौन से वाद्य का उसमें प्रयोग करना उचित होगा, ये वो तय करते हैं। और उस वाद्य के ऊपर फिर वो जब पैटर्न बजता है तब जाकर वो रिदम अच्छा तैयार होता है, बहुत सुनने को अच्छा लगता है। तो रिदम का महत्व इसलिए है कि वो शुरू में ही उसके ऊपर काम किया जाता है, शुरू में ही उसके ऊपर सोचा जाता है कि ये गाने के लिए हम रिदम का पैटर्न किस तरह रखेंगे, इसमें वेरिएशन लाने के लिए कहाँ पर उसको मोड़ देंगे, कहाँ पर उसका वो मोड़ को फिर से और एक मोड़ देकर दूसरी राह पर या जो मूल प्रवाह है उसमें लाएंगे। तो मूल प्रवाह से मोड़ लेकर जाना, फिर मूल प्रवाह में आना, ये सारी चीज़ें जो है वो रिदम पैटर्न के लिए वो अरेंजर तय करते हैं। तो ऐसे में देखो जैसे तबले के साथ में ढोलक बजा, फिर वेस्टर्न म्यूजिक के साथ में तबला बजा, तो उसी तरह मल्टीपल आर्टिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कलाकार लेकर हम लोग मतलब एक अच्छा रिदम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ऐसा जब हमारे प्रतिभाशाली संगीतकारों को लगा तो उन्होंने क्या किया कि दो तबले की बजाय और चार पांच तबले, छह तबले, सात तबले ऐसे एक साथ बिठाए, रिदम सेक्शन को बढ़ाया, रिदम सेक्शन को बढ़ाया, जबकि मल्टीपल ट्रैक थे लेकिन हर एक कलाकार जो है उसका बजाने का एक अपना लहजा होता है, उसका उस वाद्य के ऊपर का नियंत्रण अलग होता है। तो इसलिए चार पांच लोग जब एक साथ बजाते हैं तो वो चार ट्रैक एक ही आदमी से बनाने से कुछ अलग होता है। तो इसलिए चार पांच लोगों को बिठाकर एक साथ में एक पैटर्न उनको दिया जाता है और वो पैटर्न वो लोग बजाते हैं और उसमें फिर गाना जब हम लोग सुनते हैं तो जैसे भोर हुई पन्नट पर मुहे नजर श्याम सदा है, बहुत सुंदर है। इसका पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है और तबला भी एक साथ बजा हुआ है।

0: की दुनिया की एक लयबद्धता है
1: जी।
0: ऐसे ही हमारे जीवन के सभी के जीवन की अलग अलग लय है, एक विशिष्ट लय में हम सब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कला के साथ, संगीत के साथ कैसे इसे जोड़ करके और समृद्ध किया जा सकता है?
1: जी, हमने इस पूरी श्रृंखला में काल के बारे में बात की है
0: जी।
1: तो अब जब इसका समापन करने जा रहे हैं तो जीवन का और ताल का कैसे संबंध है उसके बारे में बात करके मैं मेरी बात पूरी करना चाहूँगा। पूरी सृष्टि जो है उसमें एक ताल है। ये ताल जो होता है वो ताल जैसे सूरज का

0: संयंत्र व आना, तो ये एक प्रकार का चक्र है, काल चक्र जिसे हम कहते हैं। सम है, काल है, फिर सम है, फिर काल आया। तो उस तरह जीवन में हर जगह, मतलब सृष्टि में तो हर जगह आपको काल चलता हुआ दिखेगा। जैसे पृथ्वी जो है वो सूरज के इर्द-गिर्द चक्कर लगाती है, तो उसमें भी एक काल है। पूरे सृष्टि में जगह अगर झरने से पानी बह रहा है तो उसकी एक मधुर नाद आती है, सुनाई देती है, उसमें भी एक काल होता है। तो ऐसे हर जगह पर हमारा जो जीवन है वो पूरा कालमय है। घड़ी की टिक-टिक जिस समय के पास में हम लोग चलते हैं वो भी एक काल दर्शाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हृदय जो है वो भी एक ताल में चल रहा है, और जब तक ये ताल सही चलता है तब तक हमारा जीवन भी सही चलता है। इसलिए हम लोग जो है ना शब्द प्रयोग करते हैं कि तालमेल बनाए रखो। तो तालमेल जो है ये मेल होना जरूरी है ताल का जीवन में, और वो मेल अगर अच्छे से होता है तो पूरा जीवन हमारा अच्छा होता है। मैं अपने इस कार्यक्रम का समापन सौर सम्राज्ञी लता दीदी, जिनके गले में हम लोग कहते हैं कि माँ शारदा बसी है, और जिनका गाना जो है वो अपने आप में एक ताल है। मतलब जैसे हमने कहा शुरू में कि सुर और ताल ये संगीत की बुनियाद है, और उसका मिलाप जिसमें बहुत अच्छे से होता है वो हमें सबसे ज़्यादा कर्णप्रिय लगता है, सबसे ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। तो लता दीदी का गाना हमें इसलिए अच्छा लगता है कि सुर और ताल इसका जो मेल उनमें है वो देखते देखते खुशी से जीवन भर जाता है।
1: तो श्रोताओं को भेंट करने के लिए लता जी के स्वर में वो कौन सा गीत है?
0: पलकों की छाँव में इस फिल्म का, कोई मेरे मासी की

होती है। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे आकाशवाणी के और श्रेणी संगीत रचनाकार आकाशवाणी के ही आत्मीय श्री रविन्द्र खाती जी। रविन्द्र जी, विविध भारती के सुनने वालों की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से हम आप

खाने के साथ मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत,

उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।

0: given time to us. According to the local media, our telephone number 022-400-2462. So, उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: इस संदेश से पहले आप सुन रही थी सजाद फिल्म का गाना। संध्या मुखर्जी हेमंत कुमार की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण की बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: से उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

करते थे कि ये नई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, जिसमें भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।

का व्यक्ति भी प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल है। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे।

दिवस। इसी इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं, लेकिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। इच्छित मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है। रुक जाए, बैठने के लिए, तो फिर उठो, आगे बढ़ो। समय के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं,

सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेल कूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुकाछुपी का खेल, थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चे के साथ बच्चा बनने से उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती

0: उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: सुमन भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून

bazabibaho cyane dore. Ni ukuntu uhuje umwami w'ijuru

0: फायदा पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अभिकरण खरीदारी और डेटा आधारित प्रणालियों के प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही फल मध्यम और चरणों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।

的二楼的高脚是有些窄，但它的时候就是买，就是价格不高，所以说他们那些外面。

हम आपसे थोड़ी जल्दी सोचें कि जिस चीज़ से बोल रहे हैं एफएम की 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के एडवोकेट मजबूत होते हैं जो भी है जो भी राज्य की सेवा की

खेल कूद कमाई और आराम इनमें से सबसे जरूरी हमेशा रहेगा खेल कूद का काम। पसीने में लथ पथ पार्क के एक कोने से दूसरे कोने तक की जोर की दौड़ सबसे ऊंची आवाज लगाएगा कौन? बच्चों के यही खेल कूद की तो बातें हैं जो उन्हें बनाती है मेंटली फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग।

उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।

के संसार कार्यक्रम केंद्रित है रूप कुमार राठौर पर। तो जानिए उनके बारे में कुछ बातें शिक्षक से। इस कार्यक्रम के बारे में 9:30 पर, जिसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज रात 9:30।

Lourdes, Príncipe,

0: चौक पे रहते थे, बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौर जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहिए।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो मेरे डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई है अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद सिंगर और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई

0: या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर एक दक्ष पत्रकारिक है। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौर ने

في الجمعة مهبة فيها.

मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पहला परफॉर्मेंस एक गौले टैंक पे एक हॉल है तेजपाल हॉल वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख से था लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई साल क्योंकि वो टाइम ऐसा था सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए एक दूसरे से बड़ा भाईचारा प्यार और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी rather than gossip। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो जो आवाज़ जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या फिर या सुना होगा तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था 102-103 डिग्री बुखार था और रात में अब्बा जी जिसम साहब अब्बा जी कहते थे उसका अगला रखा था साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है तो मैं सो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा जिद करने लगा और फिर खान साहब ने अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और एक घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ तो बाकी वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मन से मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था कि शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला

0: एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा उनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोजर हुए, उनसे भी बड़ा याराना था तबला का, और शमी अहमद खान साहब उनका भी आना जाना रहता था
1: तबले के साथ। उसमें उसमें आपका गुरु
0: कहा जाता है कि देखा सीखा पाया, तो कुछ चीज़ें जो है वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो है अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, खासतौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद रघुवा खान साहब, उस्ताद अमित जन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सबको देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने याद की, जैसे एक लफ्ज ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और याद की, तो मैं भी इस तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत आलम इसके पैदी का वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उससे ये चीज़ बहुत पॉपुलर हुई। ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था,

बैठ कर।

0: सुना है कि कोई कैसे सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखती रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो ऊपर से गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
1: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौर को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों

अमेरिका गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौर फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं, अभी हम साथ साथ हैं, हो तू तू,

संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौर पर इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने, विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बल ने।

जमशेदपुर का FM 1.8 MHz पर सुबह के 10 बजकर थोड़ी ही देर में हम हाजिर हो रहे हैं कार्यक्रम प्रेरणा लेकर, और आपको याद दिला दें सुबह 11 बजे से होगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

जो जीवन से उद्देश्य भरपूर हो, इसलिए हम मुखातिब आपसे और कर रहे हैं।

इतने प्यार के लिए कहाँ रहता है। तो मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला

जिसके जोर से भर जाते हैं, इसलिए उनकी जिंदा दिली पर यकीन कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ

तो ताउम्र आप भी राजी रहेंगे, थकान निराशा आपको कभी छू नहीं पाएगी। चलिए सुनते हैं।

चरण इसी में हम ग्रुप सहज रहें और अपने

Claro.

là ngày Chúa Việt Nam.

oder für den Menschen.

0: जिंदा को सिद्धाल देंगे जरूर और जाएगा अम्मा जरूर उसको
1: यदि आज माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए देश के समय चलना चाहते हैं तो पत्र नोट करें।

money.

ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ

ऐसा और वहां

but he'll rest.

0: किसी ने
1: हाँ धोखा तो किसी ने नहीं आपकी मदद किसी ने
0: तुमसे
1: तुमसे अच्छा बताओगे
0: आकाशवाणी है ना यदि खुदा है उसका नेटवर्क देश भर

0: पिता कभी सभी के जीवन से जुड़ी कुछ यादें,
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूलिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14

से निवास जिनमें भाई बजे

这两个你自己分割一点，那什么在上面的事。

Ну, тем не менее, как бы, вот я возьму,

0: söylem getirirsin. Aklım beni bir üstü bıktı. Amar gitok ki rakeysa, kavun sabi ki suhutri, nusul sabi, sahte kar rahi hai, apne kitab, kavi sabi ke jivan se juri, kuch liya hai.
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति. लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: सुनना न भूले. कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के स्वागत.

in den Hand-Mein-Schritte-Raum geil zu werden. Ich habe die Welt die Welt तो अब आज की इबारत से पहले उन श्रोताओं को बता दें जो अभी तक इसमें

की इबारत से एक आठ दस्तक देते समय दरवाजा खोला तो देखा जैसे मेरी ही शक्ल मेरा ही हमसाया। कहने लगा मैं तुम्हारी ही यादें हूँ, सलाम बतेरा चाहता हूँ। याद करो वो भूत की चलने का पंडित पर बतेरा। इसी पंडित पर जब बातें होती थी एक दिन जब खो गया कहीं कान का बाला, वो सूंध लोटी वो खिलौने वो रेत की नाव वो झाग के माजी वो काट की बेल वो सीख के हाथी वो मोम की चाक जो रुकी न चले वो संगीता की वो जादूगर का खेल

information, like,

Il faut que je fasse ça comme monsieur.

that's

सुंदर से कनेक्ट होकर बच्चे बोलते और शांति घनश्याम जी की तरफ ही श्रोता लेते हैं कि वो कभी गाँव में गए कि ना हो और वो लोग गाँव के बारे में क्या जानेंगे, गाँव का उनका जीवन लड़ते झड़ते दोस्तों का गाँव की जिंदगी क्या होती है वो बातें रह जाती हैं तो दिल में इसका सच्ची उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जनवरी इस बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात खत्म होती है हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे। बहुत मजा आया था, यहाँ तक पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बड़ा बहुत सारी चीज़ें हम खरीद लिया करते थे। और हमारे श्रोता ये लिखा है कि मेरे गाँव के चारों तरफ पहाड़ है जिसमें एक झोपड़ी होती है जिसके कारण मेरे गाँव का नाम सोकर है। मेरे गाँव की लोकेशन बहुत अच्छी है, गाँव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तरह में बता है, दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गाँव तो हमारा जीवन है, इसके अच्छी हर स्थान हमारे लगभग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत बताते हैं। गांव के ढोल की बेरंगी पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं, ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं जिसने हमारे मन को असली सुकून और शांति देते हैं। और भी उन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक अजीब सिलसिला सफर है, अक्सर लोग गांव छोड़कर शहर में रहने लगे हैं लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में जो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता, मन अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गाँव में। तो सुनाने वाले

देखना हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस चीज के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस चीज को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नहीं है देखते हैं कि कॉमेंट से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरे वहाँ तीन गीत में भी शामिल होंगे, आज हमारे सफर में पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश जो है बहुत सुंदर था, बचपन हमारे गाँव में राम लीला होती थी और हमारे लोकगीत गौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत योगदान है। बहुत बहुत बधाई मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बुला दिया वो बहुत यादों को जगा दिया, तो जितना यादें पहुँचनी है ऐसे में समय समय पर उन्हें जगाना ही चाहिए सुबह। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि यह हकीकत है कि विभिन्न वर्ष यानी पाँच दिन में हम जान नहीं सकते, इसलिए अपना अक्सर अपने बच्चों और आस पास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी।

पहला जिसके शामिल हुआ जो बहुत बड़े पंडित जी हाँ, तो यही तो आपको पसंद है। एक और स्वतंत्र लिखा है कि आज की बात पढ़कर आपने बचपन और बच्चे के साथ ही याद आ गए हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है। कौन कौन से साथी

इसके पांच करीब 100 फीट के आसपास दिखा है, जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है, वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे, जो आज भी नहीं है। यही सारी चीजें हैं जो हमें बचाने में थोड़ा सुस्त यात्रा करते हैं। अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो है वो गाँव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भाषा सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन के जो चटपटी चीजें थी उसके बारे में लिखा है कि बैर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ करते रहते थे, वो कागज की पुड़िया के समान बांध बीमा और मीच के ऊपर के लिखाते हुए घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गाँव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उसमें गाजा और रंग का मेरा नाम है, आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़

करना है श्रोता, बल्कि शिक्षाओं में सुन गई पराजिशन मतलब फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थी जब पंखट पर हम सभी खट से भोर की किरणों को ताजा करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, याद नजीब चीज होती है, न कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी चीज से किस रात से उसको दस्तक देती है और हम घंटों बैठे रहते हैं उस रात भी उसकी उच्च तस्वीर के साथ। मन में इन सब यादों को बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर दिया है। हर चीज को स्वीकार करना ये सबसे आसानी है, इसमें बड़ी समस्या है। हम आपको बताने हैं सदा

से तहरीर और मुनशा पर सुनाया जब हमारे श्रोताओं ने गीत को पहचाना बिल्कुल ठीक और अगले गीत को आपको पहचानना ही कल घर पहचानना है। इस श्रोता ने लिखा है मैं कल भी अधिक करीब 80 किलोमीटर दूर चांद दूर दूर नर्मदा नदी पर बसा है वहाँ दर्शन करने गई थी। वहाँ नाव में बैठ कर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मैं सब कल नाव में बैठ कर आई हूँ।

स्किल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है।

टूट जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं जिम्मेदारियों के बोझ से पहले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम उसके बाद थोड़ा सा खेल कूद चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुकोछुपी का खेल। थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चे के साथ बच्चा बनने से उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेल कर जरूर देखिएगा।

पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अपने पिता कभी सभी के जीवन से जुड़ी कुछ यादें,
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: सुनना न भूले। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के

संगम की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश सिंह बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने वडोदरा में पहली परिचालन उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ।

स्वास्थ्य और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी

राज्य को और भी सशक्त बना रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में

0: सचिव और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता और प्रतिष्ठा का
1: सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांटे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो की जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गाँव गाँव तक सड़क पहुँचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, तो जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना के माध्यम से 22%, 27% और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.news.air.gov.in और हमारे news.air ऐप पर भी उपलब्ध है। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और अच्छे हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर

parte de esta presa, es para estar sobre el mes. Y en el

सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पाकिस्तान पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार

सीनियर क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीका के केंद्रीय कमान ने कहा कि अमरीका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए, जिनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशन द्वीप, मीना

ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सारे समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @PIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश सिंह बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दिया है। उन्हें अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र शेखर राय और सुचिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय

थोड़ी का दावा करने वाला वीडियो है। पत्र सूचना कार्यालय की सदर जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में शुभारंभ कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच 11:30 बजे से शुरू होगा।

मंगाई के कराए वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरल कर्नाटक और तमिलनाडु में तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ज्यादा जानकारी मिलने से सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 99.18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासन परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया और फीफा विश्व फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर

उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको।

भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है।

the rock.

kere gider babamdan

सुरक्षा जोखिम को देखते हुए राज्य के सभी 444 बालू घाटों में बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: कार्यक्रम सुनने वाले हैं और सभी श्रोताओं को सखियों को सहयोगों को और आरती आपको नमस्कार संतोष जी आपको और सभी सखियों को सभी सखियों को आदि श्रीवास्तव का नमस्कार। तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती जैसे सुधीर जल्दी कर तो और सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज से अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। बिल्कुल, और ये खेल दिवस सुनता है छोटे बच्चों का दिवस है तो आज बच्चों के लिए है। तो बचपन के जो खेल होते हैं आप लोग कौन कौन से खेल खेले, क्या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ये ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर के बाहर? दूसरा, माता पिता ने किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में आपको बताइए। आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पर ज्यादा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल नहीं खेलते? इस बारे में बहुत सारी बातें होंगी और आज होगी कहानी पर मिश्री, इसमें किस तरह की बातें भी बताइए। भीमव्वा डोडाबलप्पा शिलेश अठारह जो की पारंपरिक छायाकृत की कलाकार है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
1: बड़ों को भी अच्छा लगता है,
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कुछ कहना भी हम बात करेंगे, खुश रहना है खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहाँ जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना ये चीज़ें बहुत ज्यादा।
1: बिल्कुल,
0: तो आप इससे क्या विचार है कि ऐसी मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम नहीं क्यों ना हो या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी रखता है आपको कि लोगों के इसमें इस ध्यान में आप ही कैसी इमेज बन रही है? तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे इसको टिप्स आपको काम की किस तरह सुरक्षा कर रखते हैं आप, रखते हैं जी भी आपको जरूरी सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर

सुनवाया और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार है वो उनके बारे में बात करेंगे। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोर नाला गाँव में जन्मे भीमव्वा दुर्गा बलप्पा जिले के थारा कर्नाटक की पारंपरिक खेला कठपुतली यानी कि डोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही है। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो प्राचीन कला का संरक्षक रहा है। यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं कर्नाटक में वहाँ की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल इसका अर्थ होता है चोगलू गोम्बेता जो आपने मुझे बताया है जो कर्नाटक की एक पारंपरिक खाया कठपुतली कला भी है और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है कि कहानी जो हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है उस माध्यम से उन कहानी को अच्छे से समझाया जा सके। बिल्कुल जैसे कि कुछ कला जैसे मंथन किया जाता है हर लड़के से उस कठपुतली के जरिए मंथन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की। जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियाँ बहुत बनती हैं तो वहाँ लकड़ी की कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों की साथ प्रयोग किया। बिल्कुल और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गाँव तक पहुँचाया जहाँ उन्होंने कहानी संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम चोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आदि और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ की लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं। बिल्कुल और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गाँव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज़ उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सके ताकि जो चोगलू गोम्बेता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है कौशल है वो उन सभी से पहुँचा सके। बिल्कुल और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन में कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयारती है जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनकी मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला रहा है और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखना आज भी संरक्षित है और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं त्यौहार हैं जो भी परंपरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है। बिल्कुल उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा ताकि चोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला चोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा के लेखक धारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया। वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें लोगों को इससे जोड़ती रहें यही शुभ।

0: होते हैं, ये बच्चों को बड़े बिठाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और हाँ करते स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था किसके सारे खेल दिखाए जाएंगे, और उसमें कुछ कठपुतली होती है जिनकी कमर बड़ी रह सकती है, उनका जो डांस हॉल देखते हैं बड़ा होता है
1: और ये वजह से आवाज़ें भी निकालती
0: हैं। हाँ
1: तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखी है कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्रायः विलुप्त सा हो रहा है, गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटी जो बड़े बड़े बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसे आप लोगों ने बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आस पास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है तो बच्चों को जरूर वहाँ लेकर जाएँ, ताकि कल बच्चे भूल ना जाए कि कठपुतली नाम की कोई चीज़ होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है। और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं, और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज़ के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो देहरादून को मनाया जाता है उसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी हमने दी है।
0: और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए खेल की रक्षा करने खेल को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, इससे हमारा बच्चा जो बच्चे का वो बचा रहता है।
1: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबसे तो नहीं होगी ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित करना बहुत जरूरी
0: है। खेल में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए। और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं, कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना, खैर हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने के जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है, और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं। और यही वो समय होता है आरती जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है। बहुत जरूरी भी है खेल को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा। और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी जरूरी नहीं है। जैसे बचपन में भी हमने खेल खेले हैं, हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे, दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। लुका छुपी भी खेल खेलते थे और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा दिए, पटोलियाँ बना के खेला और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं। उनकी बहुत ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई जिंदगी की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर। तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उनकी आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकल कर खेलना। तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती

रहते हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना तो बच्चों को खेलने में बड़ी होती है। तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है। और हमारे ये श्रोता जो है कहना चाहती है कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत होते कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए प्रेरित करना है। और आगे लिख रही है कि खेल हर चीज में जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हर बीच में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है और इस बात पर भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हमारी स्वतंत्र दृष्टि ये भी कह सकते हैं खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कारण है जिसमें बाकी और अधिक सारी बच्चों जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल है परिवार है व्यवसाय है उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल खेलने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई समझाई भी जा सकती हैं, जिसको खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं, बहुत ही ऐसी तरीके की चीज़ें सीखें आप कर सकते हैं ताकि आप उनको खेलने अगर थोड़े समय वो मोबाइल से दूर जाएंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे। बिल्कुल रचनात्मकता लचीलापन सामाजिक कौशल ये सारी चीज़ें बच्चों में विकसित करते हैं खेल, और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है, हर बार बच्चे के साथ खेल जाएगी जल्दी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले। तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहाँ होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे, माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और बच्चे सीखते हैं किस तरह हमें साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीज़ें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलकर खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं। अब इससे बारिश का जब मौसम आएगा पेड़ों पर झूले पड़ेंगे तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेड़ नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला कैसे जाता है, उनके साथ बैठ कर उनके साथ खड़े होकर तो झूला भी एक खेल होता है। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे झूलेंगे ये भावना व्यक्त होती है। और छोटा जी देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है, बस हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें और हल्की फुल्की जो गतिविधियाँ होती हैं हमारी हम उन्हीं के खेल में बदल सकते हैं। और हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए और बच्चों के लिए इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ ही कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टी वी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए, जो बाहर आप खेलते हैं ना इससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो इससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, जब बच्चों को धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में रस करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर के लिए बिल्कुल, और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी है, बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा जरूर जाना चाहिए।

हम बात कर रहे थे बच्चों की खेल की, बच्चे खेलते कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते हैं। अगर वो खुश है तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज है गुस्सा है तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती है आज की, खुश है या नहीं कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश होने का दिखावा भी करते हैं। अक्सर ही होता है ऐसा, दिखावा ज्यादा होता है खुशी होती है। खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहाँ बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी

0: ज्यादा कुछ कैसे हो सकता है।
1: हाँ, तो उन तथ्यों का जो जीवन की सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावना से थोड़ा दूर होने लगता है। बिल्कुल, और हर कोई यही सोचने लगता है कि लोग इसके बारे में सोचने लगे बजाय इसके कि उसे वास्तव में जा सकता है कि उसे सच में जो पसंद किया है वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को प्यार करना है। तो परिणाम क्या होता है इसका, तुलना और तनाव। तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि इसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं कि मैं सही लग रहा हूँ या मैं सही हूँ, वो सिर्फ दूसरों की नज़र से खुद को देखने लगता है। बिकॉज इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं अपने, कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारे लाइक मिले। और साथ क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर तो देखते रहते हैं कितने कितने लाइक हो गए, वो लाइक एक कमेंट बन गए, हाँ वो ही देखने लगे रहते हैं। और बस इसी से हम ना, तो ये अच्छे रिश्ते आपके संतोष बस जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है। इन चीज़ों से नहीं मिलती, इन चीज़ों हमें समझ नहीं आती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की ना जरूरत है, क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है

खुश हैं कि नहीं खुश हैं, ठीक है वहाँ से रहकर हम रो रहे हैं, एक एक चीज़ को उससे डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीज़ें होती हैं, खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना कि चलो ये त्यौहार आया तो हम बहुत खुश होते हैं, ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अभी जो नहीं खुश हो जाते, फिर वो हर जो जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है। उसे इंतजार में भी बहुत बड़ा पल हमारे पास है। और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियाँ जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहाँ जाएंगे तब खुश होंगे, ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने है। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में जैसा आ जाती है। मन है कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नज़र से नहीं जीना है, अपनी नज़र से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है। तो देखो हमारे छोटा क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है। दोनों में फर्क से कितना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है, पर रात को हम तकिया भी करते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है। तो सच में हंसता था, लेकिन दिखावा वहीं पर सही है जहाँ तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम सोचाने की संगीत लिखते हैं ऐसे बहुत धन्यवाद बिल्कुल। और एक और सोचा जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊँ तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय बताते हैं कि सबकी सबकी करो और अमृत सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए काम खुश करते हैं।

महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें, क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज़ है हम खुश रहते हैं वो चीज़ होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बार बार पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज़्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे। और देखिए, अब मैं एक अच्छा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे पिता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या किसी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और की होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया की साइट्स हैं, वहाँ पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं। और इस बेहतरीन दिखने की वहाँ पर होड़ की नतीजे है, खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों के महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छुट्टी होती है। बहुत सही बात होती है, बहुत सही। और एक और पिता जी लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, लेकिन जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक चौकटी की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छुपाना होता है। और कुछ नहीं, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली चेहरे छुपी रहे। कुछ लाइन मैंने दे दिए। और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है। एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है। और आगे लिखते हैं कि दिखावा उस समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है

बल्कि खुश होना चाहिए क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को आनंद देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सी बात कही है। एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहाँ वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है। खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, सकता है

खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहाँ वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है। खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सकता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। वो सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी खोने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक से एक नकली बात है। बहुत बहुत गहरी बात कही उन्होंने। और भी संदेश है तो एक और डिवाइस होता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया से दिखावटी तो है नहीं, अपितु उसकी पोषक भी है। सिर्फ कुछ कहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चे स्वरूपांश है, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं। ऐसी बहुत से मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं में लिखी है, संदेश हम सामने नहीं कर पाए हैं, उनसे समझ आते हैं और सुनते हैं।

0: भी कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात याद लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सच में खुश हो। और उसकी बात कुछ नहीं, और इसी साथ एक और मैं कहता हूँ लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुश ही रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता जिसे मैं फैमिली हूँ, अगर कभी किसी का दुखी भी हूँ तो आप सभी सुखी शानदार जो सुरबार से खुशी होती है और लाजवाब गीत होते हैं उनको सुनकर हमारी श्रोता हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो उसके गाने भी आपको पसंद आते जाएंगे। और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और कानों में इसलिए क्या करना है, कभी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीज कुछ नहीं तो अरे कानों की तीज तो माचिस की तीज लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक।
1: और महिलाएं हेयर पिन को माचिस
0: चाबी या लेटा कोई कोई चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बर्थ जो होती है वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी तरीके करने वाले होते हैं तो सकता उसमें पंगा सो या कुछ हो तो कभी इस तरीके की चीज़ों को यूज नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कान को नुकसान पहुँचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज़ आ रही है जहाँ पे उसमें भी रहने से, क्योंकि वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पर रहता है ना भी, जो हमारे कानों की होती है वो एक लिमिटेड होती है, उसकी जगह हम अगर शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुँचाएंगे। देखो जिस तरह से आँखों में जब गंदगी आती है कोई कचरा जाता है तो आँखों में जो नमी है वो अपने आप आँख से निकाल कर कुछ जगह बाहर फेंकती है और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है जो मोम जैसा होता है वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार जो जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं, तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुद भी आ रही तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें। एक चाबी नुकीली चीज है आप इन चीजों को नहीं, आप उसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपनी आप जितना आपका ये चाहते हैं ना जितनी आपकी उम्मीद जो आपके अवसर लिया जा सके उस हिसाब से आप चाहिए वो सब चीज़ें आप मत करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना पुराने जो होते हैं बस उसमें वो फंगस भी होती है वो अंदर जाके नुकसान पहुँचाता है, इसलिए इन सब चीज़ें आप ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कानों को बहुत ध्यान रखें और जो ईयरफोन वगैरह रहते हैं ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए, और क्योंकि आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कानों में तेज आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब हर समय चौबीस घंटे एक आवाज़ की आती रहती है तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है कि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुँचाएंगे। इसीलिए भी इस चीज़ का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो भी हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करें।
1: और सबसे बड़ी चीज है आप अगर आपको सुन ही रहे हैं आपको बहुत जरूरी आप कान लगाना तो आप 50 इसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 के ऊपर मत करिए, बहुत ज़्यादा फुल साउंड में मत सुनिए चीज़ क्योंकि आपको बाकी आवाज़ें ना आए। और दूसरी चीज़ अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो लगाएं एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना एक कान में लगाइए फुल जगह आपको दूसरे कान में लगाएं, इससे क्या होता है ना कान आपका ऐसे पलटे पर अगर इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए कृपया करके, अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हमें दर ये डाल लें घोरा तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें तो वो चीज़ आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से उसके पास जाइए उनसे दवा लीजिए उन्हें बताइए जो भी चीज़ें तो वो उसका पूरा एग्जामिन कर उसकी कैसी जाँच करेंगे उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जाँच होती है वो भी जरूरी करें।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से सोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें, इसके बारे में

करने के बारे में बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है। खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जब सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक

रोके, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाए। डॉक्टर की सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डाले। पानी को झुका कर अगर चला जाए तो उसे बाहर निकाल दे, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुका कर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का।

सरकार के केंद्र से बोल रहे हैं कम के 1.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 4 बजे से। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

的他们非来的一个模式检测下面来的那个 RTPCR有几个人是不是？但是没有他们非来他就把那个人家按时他或者二十天才到处不走的理由，也挺好的。那个啥子哦，就是那个不是啥子，那个啥子不是啥子。इस मौके में कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत से स्थिति और अग्रसर हो रहा है, ऐसे केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी

0: राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा खत्म हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया। अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के मतदान कराया जाएगा। मद्देनजर राज्य के 21 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। मुक्त संचालन के लिए अधिकारियों और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और इसके साथ ही इसके मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रसारित मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी जमशेदपुर के नगर भारती केंद्र से बोल रहे हैं। प्रसारण के लिए आगे करते हैं नगर भारती की राष्ट्रीय सेवा से।
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा और जैसे बैट बल्ला है वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे। बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में। खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य है उनके बच्चे हैं कभी बात होती है खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होते हैं मैम। आज के समय में क्या हो गया लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं ये तकनीक इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल नहीं जानते हैं आज। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल तो चलिए आपसे अच्छी बातचीत हो गई है। अब बताइए कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए।

0: preguntar cuán volverían a Ambrosia.
1: Y nos parecen de mamá.
0: A checar su volverían.
1: Dejar que había dijiste volón.
0: ¿Qué tenía que empezar?
1: Me marchaba un mes, a los que tenía pique.
0: ¿Dice pique? ¿Qué es el pique?
1: Me dijiste por su hijo. ¿Cómo dividen por el peón colegio?
0: No pique que se hace a tu hijo, pero dijo que se me ha pasado un jardín.
1: Pero lo que es más que la persona que me hizo hablar de mi mamá y de mi edad, yo creo que son que hay que hacer. ¿Qué iba a poder ir más que vive? ¿Qué iba a poder ir? ¿Cómo formáis más?
0: सही बताइए आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे खेलते होंगे बहुत सारे खेल
1: बिल्कुल क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा
0: कैसे खेलते थे कितने रन बनाए बताइए अपने बारे में क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे बॉलिंग दोनों थे बचपन में तो खेल बहुत कमी खेल पाते हैं
0: आपको नहीं खेलना होता है ना
1: खेलना होता है सुबह सुबह फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिल पाता है
0: तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय
1: हमारे तो टारगेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं
0: अरे वाह क्या बात है तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा
1: जिम्मेदारी गुजर गए जिम्मेदारी घर के आगे तो सब चीज से छोड़ना पड़ा
0: ये होता ही जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ सामाजिक जिम्मेदारी के बाद हमको रोक देती है वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छा बताइए तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साथ ना
0: ठीक है सुनते

0: अवकाश नमस्कार, कौन बोल रही है?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर सहसीसरों जिला विदिशा मध्य प्रदेश एमपी से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है, बहुत बहुत अनुसार
1: जी। और आप कैसी हो?
0: अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो भी गर्मी है भाई, बहुत उमस है, पसीना आता है, परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आप तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं आते, तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है,
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गाँव में खेला तो होगा आपने, ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं, बचपन में गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंगा जीती चोर सिपाही हकी खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली, आप कह रहे फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हकी खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते है ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, नाचते हैं, उसको उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा जी, तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत?
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा?
1: जी जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: देखो कहीं कहा

0: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मतपुर से इसके मांगीलाल दाकर बोल रहा हूँ।
1: मांगीलाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
1: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छी हो गई है।
0: जी काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
1: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपसे प्रयास किया होगा।
0: जी जी
1: कैसा लग रहा है आपको जब आपकी कॉल लग गई है? तो
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मंचा गीत सुनता हूँ।
1: मंचा गीत के लिए खत लिख रही हूँ मैं।
0: जी जी भेजिए।
1: ठीक है,
0: और येलो पहली सुनता हूँ, काफी पहली सुनता हूँ, और आपका पूरी कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
1: बहुत अच्छी बात है मंगीला जी, और क्या करती हैं आप?
0: मैं खेती बाड़ी करता हूँ मैम, किसान हूँ।
1: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
0: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
1: यही इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
0: जी जी मैम।
1: तो बताइए, हम थोड़ा सा अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल है जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
0: जी मैम, मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
1: अरे बैटिंग करते हैं, बॉलिंग?
0: बॉलिंग में कर लेते हैं, बैटिंग में कर लेते हैं।
1: क्या बात है, हरपन मौला है फिर तो आप।
0: जी
1: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने विकेट, कितने लिए बॉलिंग में?
0: विकेट जो मिल जाते हैं ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
1: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
0: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
1: अच्छा, कौन सा गीत सुना है आपको
0: आज? मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूँ तो चिड़ा याद मिला दे, वो रब्बा।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: ouais, moi j'ai dit que je suis un peu plus de temps,
1: mesdames.
0: मेरा
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सारे बढ़ते
1: नमस्कार नाम बताइए अपना
0: मैं तो ये बोल रहा हूँ
1: कहाँ से
0: सोलापुर में बारकी के
1: अच्छा स्वागत है आपका नवीन साहब कैसे हैं
0: अच्छे हो मेरा
1: हम भी अच्छे हैं
0: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मेरा
1: अच्छा अच्छे लगते हैं आपको कैसे
0: सुहाना सब बहुत अच्छा लगता है आपकी नई चारों पर ना तुम कार्यक्रम सुहाना पर एक बजे से दो बजे तक
1: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम
0: अच्छा लगता है हेलो अच्छे कार्यक्रम है
1: वो आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमने पसंद लिख लिया है
0: नहीं मैडम मैं लिखा भी लिखूंगा इसे आगे
1: अरे क्यों नहीं लिखा भाई आपके लिए तो है वो प्रोग्राम
0: लिखा भी इसे आगे बहुत पत्र लिखता हूँ
1: बताइए गाना कौन सा सुनवाए आपको
0: गया ये गीत सुनवाएंगे
1: यदि सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत

0: Madrid a Sam Vicente y Morgan Center de los
1: बताइए कौन से गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: जी मैम, हमको सुनना है करण धवन का बंधन पर प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहती हैं। चलिए सुनते हैं आपका।
0: बंधन पर प्यार,
1: चलिए सुनते हैं।

0: जी
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: बिल्कुल, देश की सीधी कार्यक्रम प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाए जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है होता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम,
0: आपका नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपको संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं।

0: होना चाहिए। और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है, कैसा खेल है इसके बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे?
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या बताइए, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे, क्या युवा हुए किशोर हुए?
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था। और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती है। और खेलना का मन होता है।
0: जी मैम, आज बच्चे की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल में तो खेल गेम होते ही है, लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, सीमित करके रह गए हम बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा

0: आता था कि हमारे जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेल करते थे तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती है। खेलने का मन होता है
1: लेकिन आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल में तो खेल गेम होते ही है लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
0: जी मैम बिल्कुल सिमट करके रह गए हैं बच्चे। लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है व्यक्तित्व होती है वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए। अपने आस पास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाए।
1: बहुत सुनिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। के लिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
0: बिल्कुल मैम एक बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्म खलनायक का गाना है ऐसी तेरी याद आती है।

0: मैं अमल बसमदारी बात कर रहा है औरंगाबाद सोनीपुर आसाम से।
1: स्वागत है आपका, कैसे हैं अमल जी?
0: बहुत अच्छे हैं, अब तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: आप कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
1: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, जब तक कॉल भी लगे आपको इस नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
0: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाता है और साई का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
1: साई का खेती भी करते हैं?
0: जी जी, असम में तो साई का ही खेती ज्यादा करता है हमारे हम लोग।
1: बिल्कुल असम की चाय, कौन सी चाय? खुशबूदार पत्तियां?
0: जी जी जी।
1: अरे हम भी चाय की बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत से ही बैठ के चाय बनाते और पी लेते।
0: नहीं हमारा साई का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और पार्ट को पैक करने भेज देता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
0: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
1: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
0: बनाती भी है और बजाती भी है।
1: खेतों से
0: बम्बू से बनाता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है तो बताइए। चलिए कभी आपको सुनेंगे बांसुरी, फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
0: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: नमस्ते, कौन जिला फरमा रहे हैं?
1: जी मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के गुड़गांव जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपकी खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, बस आपका इंतजार कर रहे
0: हैं। अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ तो दीपक जी, और क्या करते हैं इसके अलावा, कोई और शौक है? रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है, जैसे गाने तो सुनते ही है, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: क्रिकेट
0: की कमेंट्री। तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या खेलते थे, क्या स्पोर्ट्स था? अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो
0: खो। बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो, है ना? कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किस्से होते थे वो।
0: तो बड़े होने के बाद फिर खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: हमें तेरे नाम का गाना सुना है मैडम, जो किसी को वफा के बदले वफा रही मिलती।

जून को मतदान होगा, नाम वापसी के अंतिम दिन आज कोई भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। झारखंड में दूसरी संसदीय होने वाले चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों झारखंड के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और उनके समर्थित उम्मीदवार के बीच मुकाबला है। रांची के नगरी मौजा में पुरस्कार वितरण टू के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध मार्च निकाला। ग्रामीणों की योजना मुख्यमंत्री

given certificates of difference or foremost forms respiratory. और मौसम विभाग के प्राप्त पूर्वानुमान के मुताबिक रांची समेत सोलह जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रदेशित मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

ज्ञान सिर्फ स्वार्थ होने का नाम नहीं है, पर प्यार।

तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, पर हाँ मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक

तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहें तो जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें तो कहा था बस एक को सौ तरीके से प्यार किया।

एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण सफिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राण वायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चेहरा गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है,

सुन रहे थे द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गीत अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देवबर्मन के संगीत के

0: से मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के हैं बोल और राहुल देवबर्मन का है संगीत। आइए सुनते हैं ये संदेश। अमर गीतों की रचयिता कवि कवि की सुपुत्री निकुल प्रदीप साझा कर रही है अपनी किताब कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता,

सुनते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में फिर का रिश्ता सुनते हैं गीत अलका याग्निक कुमार जानू उदित नारायण की आवाजें सन्नी के बोल है और नदीम चवन का संगीत है।

intentionally, आज आपको

Stephen, chapter 3, verse 5 to 10, verse 1.

0: quiet, altered minds. गुरु मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए चाहते हैं
0: आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: Hazır mı? Upbeat. Daha bana. Türkiye Romantik Spor'daki Halk Sendika. Manki
1: हमें बादलों को चाहिए रोशनी का निकल चले अभी तो सूरज उगा
0: रेडियो स्टेशन में हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है सूचना शिक्षा और मनोरंजन का सबसे

each of them.

स्कूल और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहलों की जानकारी देते हुए केंद्र की विभिन्न परियोजनाओं और संस्थानों के लिए सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की बाकी राशि जारी करने, कोयला कंपनियों के बकाया भुगतान, मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के सरलीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के संसाधनों को मानव पूंजी से जोड़कर राज्य

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में राज्य को पर्याप्त केंद्र सहायता राशि दी जा रही है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड समेत देश भर के 11 करोड़ किसानों को सालाना 6

now I'm not just helping them, I'm also helping the customer. Now I'm also helping them. हर दिन जो दस तीस घंटे में होने वाले चुनाव के लिए जामा को जगन्नाथ राम कांग्रेस को प्रणाम राम और एनडीए समर्थित उम्मीदवार

प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जामतारा जिले के लोगों विशेष कर गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जरूरतमंद लोग जन औषधि केंद्रों में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट।

ग्रामरा में आज वो रोज मेरा योजना मुख्यमंत्री राहत घेरने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मोराबादी में रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य सरकार विकास के नाम पर किसानों

pelo cabeça e no rosto. Ora, por isso, não tem que fazer Sudah masih menjadi objek kajian dari Federasi Perikanan Sehat dan Global. Menteri Hemat Sore menjadi sebagai tiga tim atas sah. Dari bahagian terhadap kemudahan dan kepermudahan, kendera kerajaan Malaysia sama kendera kerajaan Malaysia pada aksi sebelum. Terakhir nasional online sebagai tenaga. Terakhir modal dari Federasi Tarik Salam Sebelum. Pasti menteri menjadi mukti kemarahan terdiam dulu. राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश से गर्मी से राहत पड़ोसी राज्य बिहार में मानसून की दस्तक राज्य में दो तीन दिनों में करेगा प्रवेश और श्रीलंका दौरे के लिए अंडमान की और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा झारखंड की कुमारी पलक का चयन और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हो

कौन है सेंट से मोहम्मद रफी की आवाज में हर्ष जयपुरी के बोल और संकल्प डिकिशन के संगीत के साथ है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला है अगला गीत जो कि है साथी संत से।

घंटे से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, आनंद भक्ति के हैं बोल, लक्ष्मीकांत।

लक्ष्मी कांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला में एक और सुंदर सा गीत, जो कि है सौदागर।

सर मैं तुरंत आपको हाँ नहीं बोल सकता हूँ। डॉक्टर जी की उनकी मान्यता है, उन्होंने

अंजलि परेशान तो हो सकता है क्योंकि थोड़ा गरीब आदमी होंगे भी, लेकिन एक साफ काम होते जुनून था मेरे अंदर कि नहीं मुझे जो करना है तो करना है और ईमानदार से करना है और आगे एक कामयाब निर्देशक बनना है, ये मेरे अंदर वो था। तो सर मैंने भगवान महावीर के लिए जो है कि हमने उमर गाँव में जिंदा में छोड़ी है जहाँ पर रामायण वगैरह की स्थिति पहुंची तो पटेल साहब का है कभी उनका ध्यान हो गया बहुत लेकिन काम से उमर गाँव में हम गए उमर गाँव में हमने टेट वगैरह लगाया। सर पहले क्या था कि आप जानते होंगे कि आई एस एपिसोड गर्म से थे वो बच्चे

को मैंने कंप्लीट किए। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ सर, दो चार एपिसोड को बनाने के अंदर मुझे कम से कम 3-4 साल लग गए। अरे बाप रे, 3-4 साल किसी लगे कि 3 साल तक तो अध्ययन ही करता रहा ज्ञान धर्म के बारे में, भगवान महावीर के बारे में जानने की, और उसके बाद में फिर अलबत्त तो मुझे मतलब उसको दर्शन करने में लग गया। जो भी पर्सनल ड्रामा था और उसमें बड़ा टफ मामला था सर, तो दर्शन के ऊपर बड़ी बड़ी मछली ले आ रही थी उस टाइप की।

करते हैं अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया तो उसको मेरी फिल्म को ही सजेस्ट किया और मेरी फिल्म को ले लिया मैंने और अब तो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया बिल्कुल तो ये मेरे लिए कामयाबी वाली बात होगी बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए अच्छी बात आपने क्या किया। उसके बाद एक शॉर्ट मूवी बनाई वो मुंबई एक बहुत फेस्टिवल होता है मुंबई इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया तो उसके बाद में मेरी उम्र भर की मेरी एक वो थी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला जी जी 2022 में। उसके बाद में फिर मैंने एक मूवी और बनाई शॉर्ट मूवी और भी थोड़ा सा मतलब क्या है कि मैं अपने आप को ये करने के लिए मैं बहुत शाम से काम है जी जी। इसके बाद मैंने देवता बनाई सर देखिए देवता भी जो है मेरी पहले की खजुराहो इंटरनेशनल के अंदर उसको भी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिल गया जी जी। उसके बाद में सर मैंने अभी फिलहाल मैंने 5 एपिसोड आप ही कौन वेब सीरीज बहुत सारी वेब सीरीज है

वो कमजोर होंगे उसके बाद में फिर लेकिन क्या होता है बिल्कुल समय की और बोला जाता है जी बताइए वो ये है कि मैंने तो संघर्ष किया जी 35 वर्ष संघर्ष किया संघर्ष क्या होता है

सर मैं इसमें बहुत कामयाब हो गया तकरीबन आज समझ लीजिए कि 10 एपिसोड उसके मैंने कम्प्लीट कर दिए हैं। उसको मैंने फिल्म बॉक्स करके नाइट मास्टर है, बहुत काफ़ी फेमस था नाइट मास्टर है और बहुत लेट इंसान है। मैंने सबसे पहले उनका प्रोग्राम बनाया उसके ऊपर, उनकी प्रतिभाएँ बताई उसके अंदर, उनका इंटरव्यू लिया। देखिए मैं तो एक ऊपर वाले की गेम होती है।

मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे अंदर अंदर एक ऊर्जा पैदा हो गई और मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैं अभी मतलब मेरा एक प्रोग्राम आता है जो मैं नई प्रतिभाएं हैं, जो हमारे बहुत बहुत भारत देश के अंदर जो प्रतिभाशाली लोग हैं और जिनकी प्रतिभाएं लोगों तक पहुँच नहीं पाती है, जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनका प्रोग्राम बनाऊँ, दर्शकों तक मैं वो पहुँचाऊँ। तो मैं ये काम भी करता हूँ और निःशुल्क करता हूँ सर।

0: Lo hago, Carolina.
1: Oh, Ana, ¿ya te sentaste?
0: देखना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर ये कमबख्त कुछ खराब है। सच ये है कि जब आपसे बातें करता हूँ तो सब कुछ छोड़ कर जाता हूँ और कुछ भी याद नहीं आता कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ।
1: मैंने होता है आप कहना बहुत सही है देखने लगे हैं
0: पर मेरे दिल की तरफ है मैं सिर्फ आपके अपने मन की आंखों से देख सकती हूँ आज ही मेरे सपनों को साकार कर सकती हूँ कि आपको मुझसे प्रेम नहीं है और जहाँ कशिश है वही मोहब्बत है।

0: तेरे को मुझे एकदम ऑफ हो गया।
1: हाँ, तेरी गाड़ी का मूड ऑफ हो गया तो
0: मजाक तो मेरी आदत है। तुम तो जरा सी बात से नाराज हो जाती हो। अनंत से फोन करके पूछ लेना क्या बात है।

前辈也是来第一次就是说呢，我第一次是从那里从海盖亚的西亚湾，下面的这些部分就是什么呢？

कल्याण के संगीत की सजी हुई गजल को आइए सुनते हैं। कार्यक्रम आपके लिए मैं आज की अंतिम गजल मासूम सुनते हैं और अनुप घोषाल की आवाज निजात

बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौर जो बहुत बड़े फर्स्ट गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत में किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट था। लेकिन ये था कि हम लोग पाँच भाई थे और हम लोग पाँचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों सबको बड़ा हम लोग शौक था। सबसे बड़े भैया जो है हमारे सवन भाई जो मेरे हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई है अमर जो बिजनेस में है, और मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद, इन लोग

ऐसा अलग बस गया था कि या तो प्लेन का शौक था या संगीत का शौक था। पढ़ाई में बहुत मैं कम सके थे। रूप कुमार राठौर एक व्यक्त तबला वादक है। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत के महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगीत किया करते थे।

for many chief driver performance is more than chief hall head chief hall hall. वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल चीज से था, लेकिन पता नहीं क्यों

क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से जवाब भाईचारा प्यार, और गाने बजाने की बातें ज्यादा होती थी, गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि

और मेरी जो पहली आवाज या ढा या ता या कैसे या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग में डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार

फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खासा मेरे अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और एक घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो बाकी वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका दिमाग था वो मेरे मदद से मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। इसका यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला

एक और बड़े उस्ताद गुर्जर साहब और उनके साथ में काम करने का मौका मिला। पुस्तक की एक चीज़ बहुत पॉपुलर हुई। ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था।

बैठ करके मैं कुछ गा रहा था और कहीं से सुनाने की एंट्री हुई, उसको लगा कि कहीं कोई कैसे सुन रहा है या कुछ बज रही है। और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से उन्होंने रही और मुझे कहा कि

0: अभी भी सफेद तीर सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: सुना ना,

तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात।